इससे खुशियों को करे दुगना, हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास। तो इसे जुड़े रहिए फजल 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज यही है।

0: इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार फजा 97.1 FM के साथ।
1: नॉटिंगम की ईद की प्यारी रौनकें, अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

यार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

0: जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फसा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।
1: ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजा 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजा 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी। नॉटिंगम की ईद की प्यारी रौनकें, अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक। तैयार हो जाइए नॉटिंगम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती। ये है ईद उल अधा, जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैब ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ। इस ईद बस एक ही नाम, फजा 97.1 FM एंड डैब।

ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: The Festival of Sacrifice and Devotion is here. Eid ul Adha Mubarak from all of us at Faza 97.1 FM and app.

and your family, Radio Fuzz 97.1 FM.

बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है, सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: Eid al-Adha Mubarak, wishing you peace, prosperity, and endless blessings. Radio Faza 97.1 FM.

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: Unity, sacrifice, celebration, Eid al-Adha Mubarak. Only on Radio Faza 97.1 FM.

इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटे। फजा 97.1 FM एंड डैप के संग संग आपको ईद उल अजहा मुबारक।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are... Fazan 97.1 FM।
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
14: इस ईद खुशियों को करें दुगना, हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास, तो इसे जुड़े रहिए फजल 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज़ यही है।

0: इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार फजा 97.1 FM के साथ।
1: नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें, अपनों के साथ मिलकर खुशियाँ बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।
2: छोटे भाई यार, तुमसे ज्यादा ईदी तो हमने जमा कर ली।

तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

0: जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती। ये है ईद उल अधा, जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फसा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटे। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।
1: ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजा 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजा 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि यह है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हों और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Centre at 5 to 7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें, अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

तुम्हारी यार हो जाएगी नॉटिंघम। बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

कुर्बानी सिर्फ एक रिवायत नहीं, एक जज्बा है, मोहब्बत बांटने का और अपनों के करीब आने का। खुशियों को महसूस कीजिए और हर लम्हा खास बनाइए। फजा 97.1 FM के साथ।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैब ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ। इस ईद बस एक ही नाम, फजा 97.1 FM एंड डैब।

ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: द फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस एंड डिवोशन इज हियर। ईद उल अज़हा मुबारक फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट फजा 97.1 FM एंड ऐप।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07-59-150-669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: बड़ी ईद की बड़ी खुशी के मौका पर कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि अपनी अना, गुरूर और नफरतों की भी कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैप पे सुनेंगे आप, जहां होगी दिल को छू लेने वाली बातें और दिल के जज्बात। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैप। बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटे। फजा 97.1 FM एंड डैप के संग संग आपको ईद उल अजहा मुबारक।

इस ईद खुशियों को करें दुगना, हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास। तो इसी जुड़े रहिए फजल 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज़ यही है।

की सीध खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस सीध हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस सीध को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

0: यार हो जाए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू, अब होगी हर तरफ सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरी बहुत बहुत मुबारक हो।
1: कुर्बानी सिर्फ एक रिवायत नहीं, एक जज्बा है, मोहब्बत बांटने का और अपनों के करीब आने का। खुशियों को महसूस कीजिए और हर लम्हा खास बनाइए। फजा 97.1 FM के साथ।

0: जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फसा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटे, आप सबको ईद उल अधा मुबारक।
1: ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजा 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजा 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें, अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

0: जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फसा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटे, आप सबको ईद उल अधा मुबारक।
1: उत्सव घर आनंदमय हार्ट वार्मिंग आनंद एकता

ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैब ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ इस ईद बस एक ही नाम फजा 97.1 FM एंड डैब।

ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB. Agar tum

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and

0: are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
2: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं आसमान को देखते हैं, हो या मौला हक इलाही.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
2: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसें चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are... Fazan 97.1 FM।
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
14: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
15: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
14: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
15: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
14: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
15: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: मुझे तो हर पत्थर
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center at 5 to 7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
4: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
3: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
4: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
3: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा कर

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
2: अगर तुम

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करे।
6: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड ऐप।
3: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
6: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड ऐप। You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and app. You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and app.
3: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।

न मिलकुना तू लिखे न कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर चलती वही है जो चाहता है।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड एप।
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
9: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
9: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।
11: जीवन
8: एक खेल है, इसे मुस्कुरा

डरता है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही

You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड डैब।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and

0: are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
2: अगर तुम

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात Faza 97.1 FM और DAB पर।
12: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं, आसमान को देखते हैं, हो या मौला हक इलाही।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
2: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं, आसमान को देखते हैं, हो या मौला हक इलाही.

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापस नहीं आती चाहे

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM

ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजान आईडी 7.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजान आईडी 7.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजा 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजा 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

यार हो जाएगी नॉटिंघम। बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ। सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: You are staying. We are playing.
11: Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
14: ईद उल अधा की रौनकें, ईद के रंग, मोहब्बतों के संग, फजान 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजान 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

0: तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरी बहुत बहुत मुबारक हो।
1: उत्सव घर आनंदमय हार्ट वार्मिंग आनंद एकता

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फसा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

0: ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: टुगेदर इन फेथ एंड जॉय, ईद अल अदा मुबारक फ्रॉम रेडियो फाजा 97.1 FM।

बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

सवाल आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं? आप हमें बता सकते हैं कोई पैगाम, कोई कलाम किसी के नाम करवाना चाहिए, अप्लाई करवाना चाहिए प्रोग्राम में, सब मुझे बता सकते हैं। नंबर बड़ा ही प्यारा है प्रोग्राम में शामिल होने का, 01157100971। इस खूबसूरत नंबर कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। सो इसके अलावा मुझे गूगल भी सर्च कर सकते हैं, radiofuzza.co.uk के आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हमारा या फिर किसी भी प्रोग्राम की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो सो वो आपको मिल जाएगी। प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से जो एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं radiofuzza 97.1 FM के नाम से। बेशर्त है कि इंटरनेट आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि मांगी हुई चीज़ का मजा तो आता है लेकिन इंटरनेट मांगने का ना थोड़ा सा होता है। आजकल जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है कि जब हम किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है तो सबसे पहले 30 सेकंड बाद जो एक कोई चीज़ मांगी जाती है ना, पहले तो पानी मांगा जाता था, पानी का एक गिलास दे दे, अब मांगा जाता है वाईफाई का पासवर्ड कि ज़रा वाईफाई का पासवर्ड लगा दे। खैर प्रोग्राम में आपसे गपशप चलती रहेगी। जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ बी केयरफुल, घर बैठी है वतीजे मुझे सुन रही है, बताइएगा क्या मुझे क्या करते वक्त सुन रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की, कोई बात मुझसे पूछना चाहें या कोई बात करना चाहें सो आप कर सकती हैं। प्रोग्राम में हमेशा की तरह एक छोटा सा टॉपिक रखा जाता है, उस टॉपिक के हवाले से डिस्कस जो है मैं स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज के दिन जो है वो टॉपिक नहीं रहेंगे रखेंगे आज मज़े मज़े की बातें प्रोग्राम में शामिल करेंगे, वो बातें जो आप हम तक पहुँचाएंगे, वो बातें जो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक खूबसूरत कलाम के साथ। मुझे हमेशा कहा जाता है कि आप अपने प्रोग्राम में आबिदा परवीन की आवाज़ को हमेशा शामिल करती हैं, और सबसे पहले उन्हीं की आवाज़ को शामिल करती हैं। सो बंदे ये अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे जो है आबिदा परवीन की आवाज़ बहुत पसंद है, और एक तो ये है कि इनकी आवाज़ पसंद है, ऊपर से इनके कलाम जो है काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो वो भी थोड़ी मुझे ना उसमें भी थोड़ा मज़ा आता है। सो कहीं कभी भी आप कहीं पर बोर हो रहे हैं तो आप radiofuzza 97.1 FM को ट्यून कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तन्हाई का साथी सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM ही है। फजा रहेगा आपके संग संग, लेकिन अभी के लिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक छोटे से कलाम के साथ। शामिल करे जाते हैं प्रोग्राम में आबिदा परवीन की खूबसूरत सी आवाज़, और साथ ही में नसीबोलाल भी जो है वो बीच में है। मेरा मतलब क्या है, जो हमारे साथ कलाम शामिल हम कर चुके हैं, हमारे साथ जो दो सिंगर हैं वो हैं आबिदा परवीन और नसीबोलाल। सो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से कलाम को, मिलते हैं इस कलाम के उस पार। अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है फजा के साथ विद सलोराज। मिलते हैं इस कलाम के उस पार।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। आवाज आप सुन रहे हैं सलू राज की। और सवाल मेरे आपके दरमियान हायल होती एक छोटी कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक इस बार हम आपको फिर से मिल चुके हैं। उसी के साथ साथ हमने सोचा कि क्यों ना बैकग्राउंड म्यूजिक को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, आपको अपनी आवाज़ भी सुना दी जाए और आपके साथ गपशप भी लगा दी जाए और आप बैकग्राउंड म्यूजिक को भी इंजॉय करते रहें। सवाल बेहद शुक्रिया हम तमाम समातों का, उन नई समातों का जिन्होंने आज अभी हमें ट्यून किया। बेहद शुक्रिया आपका, अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिला सकते हैं। नंबर बड़ा ही प्यारा है, वो 1157100971। इस खूबसूरत नंबर बुक कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। सवाल आज जुमे का दिन है, सो कोई ख़ास टॉपिक नहीं रखेंगे हम, आपके साथ गपशप जो है वो चलती रहेगी। प्रोग्राम में जो है वो अच्छी अच्छी बातें भी शामिल करवाते रहेंगे। कोई कलाम मुझे प्ले करवाना चाहे तो आप वो करवा सकते हैं, या फिर कोई खूबसूरत सा पैगाम किसी प्यारे के नाम डेडिकेट करना चाहें सो मुझे बता दीजिएगा, मैं चुपके से शामिल कर दूँगी। और बड़ी ही प्यारी बात इसी के साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करवाई गई है कि ज़िंदगी ही, अब ये बात बहुत मतलब बहुत प्यारी बात है, लेकिन इसको गहराई में अगर देखा जाए ना तो बहुत सी बातें निकली है। बात यह है कि ज़िंदगी ही गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी खुश ही नहीं हुए। सो ज़िंदगी में ऐसी जो है वो टाइम आता रहता है, ऐसे ही चलती है, जो अपने होते हैं वो खुश नहीं होते और जो अपने नहीं होते वो खुश हो जाते हैं। वो तो कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ लोग खामोशी से अपने हो जाते हैं। सो मैं हमेशा यही कहती हूँ अपने प्रोग्राम में, अक्सर मैंने ये बात की है कि आप दूसरों को खुश करने से बेहतर है कि सबसे पहले अपने आप को खुश करें, अपने आप को अहमियत दें, अपने आप को देखेंगे कि देखें कि आपकी अपनी ज़िंदगी में अपने लिए क्या अहमियत है। किसी दूसरे को अहमियत देने से बेहतर है कि आप सबसे पहले अपने आप को अहमियत दें, अपने आप को देखें परखें कि आप कैसे हैं कैसे नहीं। ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते जो आपसे ऊपर का हो। इट्स मीन के मेरा मतलब ये कि आप खुद समझदार हैं, आपका खुद दिमाग चलता है कि आपने ज़िंदगी में कैसे चलना है कैसे नहीं चलना। किसी की बातों में आके कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना, किसी की बातों में आके किसी को भी जो है वो रुस्वा नहीं करना, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने किसी को रुस्वा कर दिया तो आप बेशक सात कमरे पीछे भी बैठे होगे तो रब की ज़ात आपको भी जो है वो रुस्वा करेगी। लेकिन फिर वही बात आ गई, वो बड़ा रहीम है करीम है। सो बात को लेकर चलेंगे आगे, लेकिन मकसद ये था बात करने का। इसको थोड़ी सी बातों को देखा जाए तो आप ज़िंदगी में दूसरों को अहमियत देने से बेहतर है कि अपने आप को जो है वो फर्स्ट पे रखें। जब आप अपने आप को फर्स्ट पे रखेंगे तो हर इंसान जो है वो आपके साथ अच्छे से पेश आएगा। अगर आप अपनी कोई इज्जत नहीं करेंगे, वो कहते हैं ना कि जब आप दूसरों की इज्जत करते हैं तभी आपकी कोई इज्जत करता है, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता। आप अपने अच्छे अखलाक से जाने जाते हैं, और अगर आप किसी की इज्जत करते भी हैं मतलब मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनकी बहुत सारे लोग इज्जत करते हैं। हमारे माशरे में जो है ना आजकल इज्जत उसको दी जाती है जिसके पास पैसा है, जिसके पास दौलत है, जिसके पास गाड़ी बंगला है, उसको इज्जत दी जाती है। यहाँ पे गरीब की कोई हैसियत नहीं होती। सो आप देखें कि इज्जत किसको देनी है, इज्जत का मतलब क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझें। एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते में अगर दो पर्सन एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, सो वो मेरे ख्याल में प्यार से तो रिश्ता चलता ही नहीं है। रिश्ता जो भी हो, बहन भाई का हो, दोस्ती का हो, किसी भी तरह का मियाँ बीवी का, किसी भी तरह का रिश्ता हो, रिश्ता जो है वो प्यार से नहीं बल्कि इज्जत से चलता है। जब तक किसी रिश्ते में इज्जत नहीं होगी तब तक वो रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकेगा। सो अपनी इज्जत का ख्याल रखें, दूसरों की इज्जत का ख्याल रखें, किसी भी रिलेशनशिप में जो है वो जल्दबाजी मत करें।
एंड दी एंड आपको फिर खुद ही पता चलेगा कि कौन अपना था कौन अपना नहीं था. बुरे वक्त में जो है वो साथ देने वाला मैंने जो अपनी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को जो है वो सीखा है ना, मतलब तो मुझे यही लगता है कि अपने साथ खड़े नहीं होते कुछ भी हो जाए. हाँ, मैंने गैरों को ही हमेशा साथ खड़े देखा, या वो रब की ज़ात जो है वो साथ खड़ी होती है, उसके अलावा कोई भी खड़ा नहीं होता साथ. वो कहते हैं ना कि हज़रत यूसुफ का किस्सा सुना तभी समझ आए कि हसद जो है वो खून के रिश्ते ही करते हैं. सो हसद बहुत बुरी चीज़ है, किसी के साथ करना ज़रूरी नहीं है. आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हमारे माशरे में इस चीज़ को बड़ा देखा जाता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इतना खुश है और हम इतने उदास हैं, नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए. आपने जिस बंदे को देखा है कि वो खुश है, उसके हिस्से के दुख नहीं आपने काटे, उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के हिस्से के दुख खुद काटे, तो खुशियाँ भी जीने का उसका ही हक है, ना कि आप लोग ऐसे बोलते रहो कि यार वो तो इतना खुश है वो. यार हसद बहुत बुरी चीज़ है, इस चीज़ को बिल्कुल भी मत करें. अगर आप हसद करते भी हैं ना, अगले बंदे का कोई नुकसान नहीं होगा, आप दिन ब दिन खुद वीक होंगे, आपका माइंड जो है वो आपको इतना डिस्टर्ब हो जाएगा आपका दिमाग के आपके सर में दर्द नहीं जाएगी, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाएंगे. सो ज़्यादा सोचना भी जो है ना वो अपनी ही सेहत के लिए ख़राब होता है. सो हम लोग ज़्यादा तभी सोचते हैं जब हम हसद करते हैं. सो इस चीज़ को जो है वो साइड भी कर दें, क्योंकि अगर आपने किसी के हिस्से के दुख नहीं देखे, दुख नहीं सहे, तो आप किसी की खुशियों पे ऐसे नज़र नहीं रख सकते. अगर उसने दुख अकेले सहे हैं, अगर वो दुख में अकेला था, तो खुशी का मालिक भी वो अकेला ही है.

सो मैं ये बोलूँगी कि जिंदगी में अगर किसी का इंतहा अब करना पड़े तो उन्हीं लोगों का करें जो आपके साथ मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। अब इस बात को देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग होंगे, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी इंसान ने आपका मुश्किल में साथ नहीं दिया तो उसने जान के नहीं दिया। ऐसा भी हो सकता है कि वो बेचारा और ज़्यादा मजबूर हो, उसके पास कोई ऐसी चीज़ ही ना हो जिससे वो आपकी मदद कर सके, आपके साथ खड़ा हो सके। बट कुछ लोग मजबूरियों के मारे होते हैं, कुछ लोग जो है वो जानबूझ के नहीं करते, लेकिन जो मजबूरियों के मारे होते हैं हम सज़ा उनको दे देते हैं, और जो लोग जान के जो है ना वो हमारे साथ खड़े नहीं होते, हम उनके साथ दोबारा से खड़े होकर चल पड़ते हैं। इस चीज़ को जो है ना आप थोड़ा मद्देनज़र इस चीज़ को करें कि अच्छे और बुरे की जो है ना वो पहचान करें। ज़िंदगी में अच्छे और बुरे की पहचान करना बहुत ज़रूरी है, तभी ज़िंदगी गुजरेगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी की डोर किसी और के हाथ में मसल दे देंगे तो मेरे ख्याल में आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी की डोर, अपनी ज़िंदगी के फैसले किसी और को दे देंगे, अगर कोई और इंसान करना शुरू कर देगा तो आप मेरे ख्याल में बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि बैक टू बैक आते जाएंगे।

सबको इज्जत दें, सबके साथ खुशी से रहें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं कि कहाँ तक साथ देगी। वक्त जो है वो बहुत जालिम है, ये इंसान को जो है पता भी नहीं चलता कि क्या से क्या हो जाता है। आई डोंट नो, आज जिंदा है, कल जिंदा होंगे भी नहीं, इस चीज़ का जो है वो अभी किसी को भी नहीं पता। आई डोंट नो कि अभी दूसरी सांस आती है या नहीं आती। अपनी ज़िंदगी में जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि दूसरों को खुश रखें। कभी कभी जो है आप जिस चीज़ में आपका फ़ायदा ना भी ना हो, तब भी आप उसमें जो है ना हिस्सा डालें, क्योंकि अगर आप दूसरों की खुशी में दूसरों के लिए जो है वो एफर्ट करेंगे, दूसरे की खुशी के लिए आप एफर्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल में दिस इज़ वेरी ग्रेट। इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती।

जो कहते हैं ना कि दो चेहरे इंसान को कभी नहीं भूल सकते, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ जाने वाला। लेकिन अब हमारे यहाँ पे माशरे पे देखा जाता है कि अगर किसी ने मुश्किल में साथ छोड़ भी दिया था ना, तो वो कल को फिर भी वापस आ गया, तो वो उसको अपना लेते हैं, ना कि उसको छोड़ देते हैं जो मुश्किल में उसके साथ खड़ा हुआ था। लोग बातों में आ जाते हैं और मेरे ख्याल में चीज़ बहुत बुरी है। आप दूसरों की बातों में आकर उन रिश्तों को मत खोएं, मैं फिर बोलूँगी जो आपके बहुत अजीज़ हैं, क्योंकि जब लोग हैं वो बराबरी नहीं कर पाते ना, तो वो मुखालफत पे उतर आते हैं। तो जो इंसान आपकी ज़िंदगी से जुड़े इंसानों को आपसे दूर करना चाहे, वो आपकी ज़िंदगी में आपका खैर हो आप बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इस बात का पता बहुत देर से चलता है, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान को ठोकर जो है वो लगती ही लगती है, वो बेशक बुढ़ापे में लगे या बचपन में लग गया या जवानी में लग गया, कोई पता नहीं होता, कभी भी कोई ना कोई हादसा हो जाता है। सो बस बात को कंटिन्यू करें अगले प्रोग्राम में। इस छोटे से आप बात को आपके साथ शामिल किया प्रोग्राम में, और भी छोटे छोटे मैसेज जो हैं वो शामिल किए जा रहे हैं, बट आपसे जो है वो मिलते हैं एक और छोटे से कलाम के उस पार। सो अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, जुड़ाना है फजा के साथ।

शामिल करते हैं प्रोग्राम में आप दबा बीन की खूबसूरती आवाज को, मिलते हैं इस आवाज के उस पार। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो वजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कोई भी नहीं, क्योंकि आज हमने प्रोग्राम में कोई नाम नहीं रखा, बस आपके साथ डिस्कस जो है स्टार्ट करेंगे। प्रोग्राम में जो है बिहार होने लगी है, मेरा दे मैंने एक छोटी कमर्शियल ब्रेक, सो इस छोटी कमर्शियल ब्रेक को एंजॉय करेंगे। और इसके बाद है कि आपसे मुलाकात हमेशा के अंदर प्रोग्राम में एक छोटा सा टॉपिक रखा जाता है, उसके हवाले से डिस्कस जो स्टार्ट की जाती है। प्रोग्राम में शामिल होने का बेहद शुक्रिया उन तमाम समातों का जिन्होंने आज रबी फजा 97.1 एफएम को ट्यून किया प्लस चूज किया। सो आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 1157100971 पे। इस खूबसूरत से नंबर कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। सो वेल, इसी के साथ साथ आइए चलते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के उस पार। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

सो सॉरी, बात को छोड़ के ज़रा एक ज़रूरी काम से जाना पड़ा। सो आपसे ज़्यादा ज़रूरी भी कोई काम नहीं है मेरा, बट हम बात कर रहे थे कि इंसान को जो है वो ज़ाहरी दिखावा जो है ना, उससे ज़्यादा ख्याल अपने किरदार पर तवज्जो देनी चाहिए, अपने किरदार का ख्याल रखना चाहिए, ना कि अपने लिबास को देखकर अपने किरदार को बढ़ाया जाए, अपनी पहचान को बढ़ाया जाए। मेरे ख्याल में इस चीज़ को आपको बहुत जो है वो देखना चाहिए, क्योंकि इज्जत जो है वो किरदार से नहीं मिलती बल्कि लिबास से मिलती है, ये हमारे माशरे का कहना है। लेकिन असल बात जो है ना वो ये है, मतलब मैंने इतनी वाले तरीके से बात की है, आपको हंसी भी आई होगी, लेकिन बात यह है कि इज्जत किरदार से नहीं मिलती, किससे मिलती है? अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं बात कर क्या रही हूँ। मैं एक मतलब एक टाइम पे जब इंसान का ध्यान कहीं और भी हो और इधर भी हो तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन बात को सही से आपके दरमियान जो है आपके साथ शामिल करेंगे कि इज्जत किरदार से ही मिलती है, लिबास से नहीं मिलती। मेरे ख्याल में मैंने फर्स्ट में भी यही बोला था, लेकिन वो मेरा दिमाग थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है ना, सो सॉरी अगर आपको थोड़ा सा जो है वो मेरे पे गुस्सा आया हो। सो बहुत से लोग समझते हैं कि महंगे कपड़े जो हैं वो आपके किरदार को बेहतर बना सकते हैं। सो नहीं, आपके किरदार को बेहतर नहीं बना सकते, आप अपने किरदार को बेहतर बना सकते हैं दूसरों की मदद करके, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से एक अच्छे सलीके से बात करके, उनके साथ उठना बैठना जो है वो आपका अच्छे से हो, ना कि आप अपने मतलब की ज़रूरत के मुताबिक जो है इंसान को, वो कहते हैं ना इंसान को रिस्पेक्ट देना, वो सीन ही होना चाहिए यहाँ पे। इस्लाम भी जो है वो अच्छे अहलाक और अच्छे किरदार की अहमियत देता है और बात बोलता है, और इसी के साथ साथ जो है ना इस चीज़ पे बहुत अहमियत जो है वो दी जाती है, इस चीज़ को बहुत मद्देनजर रखा जाता है और मेरे ख्याल में रखना भी चाहिए। बड़ा ही प्यारा फरमान है कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसके अहलाक और जिसका किरदार सबसे बेहतर है। बातें शामिल हो जाए, साथ में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ को शामिल कर दिया जाए तो वो एक अलग ही जो है ना वो जादू है ना वो प्रोग्राम में आ जाता है, एनर्जी से एक हो जाती है, अब मिल जाती है मेरे अंदर भी एक अलग सी एनर्जी जो है वो आ जाती है जब मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कवाली को जो है साथ में शामिल कर देती हूँ।

कोई पता नहीं जिंदगी कितनी है कितनी नहीं, सो इसको अच्छे से गुजारें, ना कि दूसरों के बहकावे में आके एक दूसरे के साथ जब लड़े झगड़े, लड़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं है कि वो कहते हैं वक्त सबसे जालिम होता है। तो मेरे ख्याल में आप अपने आप को, अपने अखलाक को अच्छा रखें, ताकि लोग आपके साथ बातचीत करें तो उनको अच्छा लगे, ताकि वो कल को किसी दो की कहीं जाकर आपके बारे में आपकी मिसाल दें कि वो इंसान फलाने टाइम पर मैं उसको मिला था और वो इंसान अखलाक का बात का बहुत अच्छा है। मतलब अभी कुछ लोग होते हैं जिनको आप पहली दफ़ा मिलते हैं और ऐसा लगता नहीं है कि आप उनको पहली दफ़ा मिल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे प्रिटेंड करवाते हैं कि यार नहीं हम तो किसी से बात नहीं, मतलब होता है, अब ज़रूरी नहीं है कि इंसान में एटीट्यूड ही हो, कुछ लोग का अहलाक ऐसा होता है जो ज़्यादा जल्दी घुल मिल नहीं सकते और कुछ जो है वो जान के ऐसी हरकतें करते हैं। सो मैं यही बोलूँगी, कभी जो है वो दूसरों के लिए भी अगर दूसरों को खुश करने के लिए आपको मुस्कुराना पड़े तो आप मुस्कुरा लें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आई डोंट नो कि कल तक आप जिंदा हैं या नहीं, पता नहीं अभी दूसरा सांस आएगा भी या नहीं। वेल गपशप आपके साथ जारी रहेगी, प्रोग्राम में छोटा सा कलाम शामिल किया हमने और साथ में बातें भी शामिल करनी है। मेरी कोशिश ही रहती है कि फ्राइडे के दिन जो है वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन

बजे तक। सो वाला अभी के लिए प्रोग्राम में हाल नहीं करेंगे, अभी तो ब्रेक आई थी यार, क्या हो गया। अभी के लिए प्रोग्राम में शोर से कलाम को शामिल करते हैं नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में। उम्मीद करती हूँ कि आपको साथ पसंद आ रहा होगा। जो लोग हमें अभी ट्यून करके बैठे हैं, जिन्होंने अभी हमें ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया। आप तमाम समातों का प्रोग्राम में शामिल होने का अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला सकते हैं। नंबर बड़ा ही प्यारा है 01157100971। इस खूबसूरत नंबर कीजिएगा सेफ, और सेफ कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। और जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा और हमारी आवाज़ को सुनते रहिएगा, प्रोग्राम में शामिल हो जाइएगा। और अगर आपके पैसेंजर भी आपके साथ बैठे हैं और कोई कलाम पे करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, या फिर खूबसूरत सा मैसेज किसी प्यारे को डेडिकेट करना चाहें, या फिर आज के दिन के हवाले से कोई पैगाम हम तक पहुंचाना चाहें तो आप वो भी पहुंचा सकते हैं। प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करते हैं हम इन्फॉर्मेशन, और होती है मेरी और आपकी कम्युनिकेशन, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, कुछ ऐसी बातें जो आप मुझ तक पहुँचाएंगे। अभी मेरे पास एक छोटे से कलाम की फरमाइश मौजूद है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके और अपने दिल में आ जाए। मेरे ख्याल में इसको हम बैकग्राउंड बीजीएम में यूज़ कर लेते हैं और एक छोटी सी जो फरमाइश है उसको भी पूरा कर देते हैं, क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता, बहुत जल्दी से टाइम गुजर जाता है। सो मैं आपको निराश नहीं करना चाहती। अच्छा, मज़े की बात, एक तो मेरी और मेरी लिसनर्स की चॉइस इतनी कोई परफेक्ट है ना, कि मतलब मिलती जुलती है। जो कलाम मुझे पसंद होता है, मेरे पास फरमाइश भी उसी की आती है। सो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से कलाम को, मिलते हैं इस कलाम के उस पार। शामिल कर चुके हैं आपके अपने दरमियान कोक स्टूडियो सीजन 3। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ, मिलते हैं इस कलाम के उस पार।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। आवाज आप सुन रहे हैं सलूराज की। सवाल उसी के साथ साथ प्रोग्राम में एक छोटी कमर्शियल ब्रेक हाल हो चुकी थी। कमर्शियल ब्रेक इस बार हम आपको फिर से मिल चुके हैं। प्रोग्राम में वक्त रह चुका है काफी ज्यादा कम, में भी शायद आधा घंटा रह चुका है। और मेरे आपको दरमियान कोशिश ये रहेगी कि आपके साथ गपशप भी की जाए, इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन जो हम ज़्यादा से ज़्यादा कलाम ही प्ले किए जाते हैं। सो बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का जिन्होंने आज रवि फजा 97.1 एफएम को ट्यून किया है। प्लस चूज़ किया मेरा और आपका साथ बढ़ सकता है और आप मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला सकते हैं। नंबर बड़ा ही प्यारा है स्टूडियो का, लाइव व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिएगा 1157100971। इस खूबसूरत नंबर कीजिएगा सेफ, और सेफ कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहां से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। सो इसके अलावा आप मुझे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk। आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, वहां पर आपको हमारा या फिर किसी भी प्रोग्राम की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो सो वो आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से radiofaza 97.1 FM के नाम से। बेशक यह कि इंटरनेट आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि मांगी हुई चीज़ों का मज़ा तो आता है लेकिन इंटरनेट जो है ना वो अपना होना चाहिए। आजकल तो ये मतलब हालात हो गए हैं कि जब हम किसी घर जाते हैं, पहले जब जाते थे तो जाते साथ हम पानी का गिलास मांगते थे, और अब जो सीन हो गया ना 30 सेकंड बाद हम मांगते हैं वाईफाई का पासवर्ड दे दीजिए। सो खैर उसी के साथ साथ प्रोग्राम में छोटे से ट्रैक का क्या फरमाइश आई थी प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक और छोटी सी आवाज। उम्मीद करूंगी आपको पसंद भी आएगी। एक तो मुझसे ये भी कहा जाता है कि आप अपने प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा आबदा परवीन की आवाज को शामिल करती हैं। मैं नहीं करती, मेरे पास फरमाइश आती है तभी करती हूँ। वैसे मुझे आबदा परवीन की आवाज पसंद है लेकिन मैं अपनी मर्जी से शामिल नहीं करती, मेरे पास जो है वो फरमाइश आती है आबदा परवीन के कलाम की।

ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई, लेकिन मैंने ढूंढ लिया। सो आइए शामिल करते हैं आप द प्रवीण की खूबसूरत सी आवाज को। आवाज में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है मेरी में, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो इसीलिए मैं अब ज्यादा बोलूंगी भी नहीं, कम ही बोलूंगी, गला थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत सी आवाज को, मिलते हैं इस आवाज के उस पार। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सवाल आप दोपहर की खूबसूरती आवाज को शामिल किया आपके दरमियान, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आई होगी। सवाल इसी के साथ साथ प्रोग्राम में आपके साथ गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा मैसेज हम तक पहुँचाया गया कि अब इस बात को अगर देखा जाए गहराई में, हम इस बात को नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम रह चुका है। सो बड़ी खूबसूरत सा पैगाम है कि ज़िंदगी ही गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी खुश ही नहीं हुए। अब बिल्कुल ऐसी ही बात है। अब मैं अगर दो घंटे आपके साथ बोलती रहती हूँ, गपशप करती रहती हूँ, लेकिन आप अगर खुश ही ना हो तो फिर फ़ायदा नहीं है। बट आप क्यों नहीं खुश होंगे, अपनों के साथ वैसे भी मज़ा नहीं आता, गैरों के साथ ही मज़ा आता है। मैं हमेशा कहती हूँ किसी दूसरे को खुश करने से बेहतर है कि आप सबसे पहले अपने आप को खुश करें, अपनी अपनी जिंदगी में अपनी अहमियत को सबसे पहले रखें कि आप क्या हैं और क्या नहीं। सुबह ने अगर बातें करना शुरू कर दी तो मुझे पता नहीं चलना, लेकिन मेरे पास एक छोटे से कलाम की फरमाइश मौजूद है, सो हम उसको जरूर प्ले करेंगे। मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे एक छोटा सा पैगाम आया, इट्स मीन कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट आई है मेरे पास और मैं उसको रिक्वेस्ट नहीं समझूंगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बहुत से लोग जो है ना अपने होते हैं लेकिन फील नहीं होता, तो बहुत से लोग खामोशी से आपके अपने हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जिनके साथ मैं बहुत अटैच होंगी। और यही बात होती है, यही होता है कि जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, बहुत ज़्यादा गपशप लगती हो, वो आपके मतलब उस तरह क्लोज़ नहीं होंगे जिस तरह आपके क्लोज़ एक वो इंसान होगा जो आपके साथ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करता होगा। खामोशी को जो है वो समझे, ये बहुत बेस्ट चीज़ है। सवाल उसी के साथ साथ शामिल कर देते हैं प्रोग्राम में एक छोटी ही सी फरमाइश को, एक छोटे से कलाम को। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आएगा। हदों को मिटाले, सो साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाएगा प्रोग्राम में, मेरा आपका साथ रहेगा ठीक ठीक 2 बजे तक। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। मिलते हैं इस कलाम के उस पार।

इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटे। फजा 97.1 FM एंड ऐप के संग संग आपको ईद उल अज़हा मुबारक।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सो सॉरी, थोड़ी बहुत सीटियां जो है ना वो सुन लेनी चाहिए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। सो वो उसी के साथ साथ प्रोग्राम में शामिल किया था एक ट्रैक नहीं, सॉरी कलाम शामिल किया था। वो कहते हैं जब एक इंसान का दिमाग एक जगह ना हो तो वो ऐसे उठ पटांग बातें करता रहता है, जब दिमाग ही दो तरफ हो, एक तरफ कहीं और भी और यहाँ भी हो, तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। सो वो उसी के साथ साथ आप बाप से बोलेंगे कि आप आपको मुझे देनी होगी इजाज़त, क्योंकि वक्त हुआ जाता है ख़त्म। मिलेंगे कल नहीं, वीकेंड के बाद बताइएगा कि वीकेंड पे कहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे, चलेंगे, फिर हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे आगे। सो कल तक के लिए, बल्कि कल तक के लिए नहीं, मंडे तक के लिए अपना, अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो मेरा और आपका अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।

इस ईद खुशियों को करें दुगना, हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास। तो इस ईद जुड़े रहिए फजल 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज़ यही है।

0: की सीध खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस सीध हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस सीध को बनाए यादगार फजा 97.1 FM के साथ।
1: नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें, अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

0: Assalamu alaikum everyone, this is Harris J. Thank you very much for watching my video. For my latest updates, follow me on Facebook, Twitter and Instagram. The information is below. Assalamu alaikum. Today when we all come together, having fun, making beautiful memories.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. तैयार हो जाइए नॉटिंगम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियां बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 एफएम एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरी बहुत बहुत मुबारक हो।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: नॉटिंगम की ईद की प्यारी रौनकें, अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन

तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: You are staying. We are playing
11: Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
14: The Festival of Sacrifice and Devotion

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: Eid al-Adha blessings to you and your family. Radio Fuzz 97.1 FM.

बड़ी ईद की बड़ी खुशी के मौका पर कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि अपनी अना, गुरूर और नफरतों की भी कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब पे सुनेंगे आप, जहां होगी दिल को छू लेने वाली बातें और दिल के जज्बात। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: प्लानिंग अ वेडिंग, रिसेप्शन और स्पेशल सेलिब्रेशन? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center at 5 to 7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटे। फजा 97.1 FM एंड डैप के संग संग आपको ईद उल अजहा मुबारक।

इस ईद खुशियों को करें दुगना, हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास। तो इसे जुड़े रहिए फजल 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज़ यही है।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

0: जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फसा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।
1: ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजा 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजा 97.1 FM

सीध खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस सीध हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटे, आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है, सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटे। फजा 97.1 FM एंड ऐप के संग संग आपको ईद उल अजहा मुबारक।
1: कुर्बानी, मोहब्बत और इत्तेहाद के जज्बे के साथ ईद उल अजहा मनाएं। रेडियो फिजा की जानिब से आपको ईद मुबारक।

इस ईद खुशियों को करें दुगना, हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास। तो इसी जुड़े रहिए फजल 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज़ यही है।

0: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
1: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
2: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Centre at 5 to 7 Lourdes Road, NG51EL.
1: Excelsior Nawab, where your special moments become unforgettable.
3: इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

0: जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटे, आप सबको ईद उल अधा मुबारक।
1: ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजा 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजा 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

0: नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 एफएम एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।
1: उत्सव घर आनंदमय हार्ट वार्मिंग आनंद एकता।

तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: कुर्बानी सिर्फ एक रिवायत नहीं, एक जज्बा है, मोहब्बत बांटने का और अपनों के करीब आने का। खुशियों को महसूस कीजिए और हर लम्हा खास बनाइए फजा 97.1 FM के साथ।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: जबरदस्त हिट।
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हां जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: It's commercial time.
3: Hello Nottingham, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
5: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
6: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
5: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
6: मुगल बिल्डर्स?
5: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
7: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
5: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
7: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
5: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

इमरजेंसी के दौरान जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे बेंगलोर जेल से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में लाया गया था, चौथी या पांचवीं मंजिल पर रखा गया था, कड़ा पहरा था। लेकिन रोज सवेरे मेरी आँख अचानक खुल जाती थी। कारण ये था कि रोने की आवाज आती थी। मैंने पता लगाने का प्रयास किया कि आवाज कहाँ से आ रही है, किसकी आवाज है। तो मुझे बताया गया कि मेडिकल इंस्टीट्यूट में रात में जिन मरीजों का देहांत हो जाता है, घर वालों को उनकी लाश सवेरे दी जाती है, सवेरे उन्हें ये जानकारी मिलती है कि उनका प्रियजन नहीं रहा। वो रोने की आवाज़ मुझे विचलित कर गई। दूर से आवाज़ आती थी मगर हृदय को चीर कर चली जाती थी।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: आपके दिल की धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।
8: कहाँ ये है?

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, फौलाद नहीं हैं, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं हैं।

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ किले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें ने बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई

0: మోహన్
1: ఇట్స్ కమర్షియల్ టైమ్.
2: हेलो सुमान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है.
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ. ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर, या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793.
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का.
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus, and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic, and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner, and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are staying. We are... Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा. मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा. इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM.
15: You are listening to 97.1 FM. You are listening to Radio Fazal 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour. Kumar Sanu.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: आएगा। ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फाजा ऑन 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।